के पग घुंघरू पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी नाची थी नाची थी नाची थी के

बरसा बोझ कभी कम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

0: बबी जी मेरी आवाज अज तो भाई ड्रामा ही होन डिया कोई। मैं ना एक गाना ला देना जिनी देर ना आवाज नहीं ना मेरी सेटिंग हो जाती उन्नी देर फिर।
1: हेलो जी
0: बबी हेलो जी हे कि हेलो बबी जी सुन रहे हो मेनू बबी जी ताड़ी आवाज जी है ना ओ मुकेश दोस्तों साडा ना कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा
2: उसके
0: मैं उन्नी देर गाना ला गाना ला बबी जी सुन रहे हो मेनू

पसीना छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना मैं जैसे यमला पगला दीवाना।

0: परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह तक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 855-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट दे दोस्त दर्शन सिंह खक दे नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज परवाज रेडियो दे उते।
1: दोस्तो सत श्री अकाल नमस्ते आदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज। एक्चुअली ए प्रोग्राम 7 तो लेके 9 बजे तक हुंदा, टाइम चेंज हो गया सी, रिकॉर्डिंग थोड़ी जी 6 बजे आई है। सो बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। लो कुछ गीत सुनदे हैं जी। पहला गीत आपां सुनदे हैं, बहुत प्यारा जिहा गीत है हिम्मत संधु दा ते बाजी दिल दी, ते फिर आपां अगले गीते दे नाल इस चालू करांगे जी।

दुनिया के मेहरबान दोस्तों, ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोतियों, ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा, वाह वाह। आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा, खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा, आप दी सोच दियां खिड़कियां खड़का के आप सजणों दिलां ते दस्तक देण वाला,

दोस्तों, मैं भजन मोहन कौल उनका गीत सुन रहे थे। प्यारे प्यारे गीत तुसी सुने हैं। सो लो आपा हुण दोस्तों साथियो मित्रों प्यारे हो आपा चलदे जी खबरां वल। वधिया वधिया खबरां कढ के चीमा साहब लैके आउंदे हैं, मेहनत करदे ने एक दो घंटे, फिर जाके खबरां तैयार हुंदी हैं। सो दोस्तो, दाल सिंह चीमा साहब दा नॉलेज बहुत है, बड़े दुनिया च घूमे आ। पर तुसी बिलीव करोगे कि चीमा साहब नौवीं दसवीं तक पढ़े है और जंग एज दे विच ए बाहर निकले सी। कई बारी डिपोर्ट होए, फिर चल गए, उधर चल गए, कदी कदी यूरोप दुनिया छड्डी नहीं इन्होंने।